0: धीमी ततक झम ततक झुणु तक ध्रुगु तत्त झुणु की ततक
1: धीनी दा धीनी ता धीनी दा धीनी।